0: ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମାଲୋଚନା କର ନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रातः सूचना सुनुले आकाशवाणी सम्बलपुर प्रचार करुछु साप्ताहिक कार्यक्रम सम्बलवाणी

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଧୁରୀ। ରିଲେ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: यहाँ रहा, याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं नहीं पता चल पाया है। व्हाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में एफआईएच यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने

0: ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲି କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁକେଶ କୁମାର। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आपसी संबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की स्वीकृति दे दी है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भारतीय चुनौती रखेंगे। ओलंपियन तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋतुगा शिवानी गड्डे मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इनोसे स्कोर छू हमारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। संसद भवन में आज आयोजित बैठक के बाद केंद्रीय

0: मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा हुई।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौता किसानों के हित में है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के लिए ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष अफ्रीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित भी करेंगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने की मंजूरी दी है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने सभी संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगे। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर सुनुथिले हिंदी संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र नु। ইহাদে মূলকর্মা আমার সম্বলপুরী গীতর কার্যক্রম কার্যক্রমর পহলা গীতকে শুনুন মতিলাল দোরাঙ্ক লেখানু গীতকে গাইছন সূর্যমণি সাহু।

0: चाली आरु ओटा भोंगा चाली, ओटा भोंगा चाली।
1: ओडिशा सरकारंक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानंकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसलर बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्प्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देबाकू पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
2: कार्यक्रमर शेष गीत के सुनुन गोपाल साहूंकर कंठनु। गीत के लिखिछन अरक्षित धरुआ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉनबील मेले की।
3: जॉनबील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए।
3: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉनबील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
3: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
3: विमलेश जी, जरा जॉनबील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
3: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
3: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
3: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉनबील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
3: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं, तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
3: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
2: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
3: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
2: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
3: सांकेन।
4: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? हाँ, ये जानते हैं।
5: यमन भैया कहाँ हो भैया?
6: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
5: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
6: अच्छा, क्या लिखा है?
5: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
7: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
4: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
5: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
6: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
7: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
4: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
7: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
4: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
5: नमस्ते पापा।
4: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
5: ठीक है।
4: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
5: बड़ा मजा आया।
4: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, आओ टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
7: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
4: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया।
8: अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
9: अरे आइए आइए वर्मा जी, नमस्ते नमस्ते।
10: नमस्ते अंकल।
9: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
8: बिल्कुल ठीक पहचाना।
9: आइए, स्वागत है आप सबका।
8: धन्यवाद।
9: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
8: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
5: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था।

0: बड़ी सुंदर जगह है।
1: थैंक यू।
0: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
1: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
2: जी,
1: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
2: बिल्कुल ठीक कहा।
1: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
2: अरे
1: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
2: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
0: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
2: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
0: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
1: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय, ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
0: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
0: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
2: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
0: तो हम भी चलें?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
0: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गयी थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
0: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
1: अरे।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
0: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
0: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे।

0: सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: सुनु थिले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम.

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर

0: हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिथिले हिंदी संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान शुणु केतोटी संबलपुरी गीत आज कंठशिल्पी जितेन्द्र हरिपाल एवं रीना दास कार्यक्रम प्रथम गीतटी को शुणु रजनी भूईं लेखार कंठशिल्पी रीना दास संगीत निर्देशना प्रभुदत्त प्रधान।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: हेलो
1: हेलो घर सुधार कार्यक्रम को आपन को स्वागत जनाउ छी।
0: हाँ या नमस्कार लोककला ग्राम कुमारी रु पुष्पांजलि कुमारी कहतली।
1: आज्ञा मैडम केमती अछंती?
0: भल अछु आज्ञा आमे समस्ते भल अछु।
1: अच्छा सेपटे वर्षा केमती मैडम?
0: वर्षा टिके टिके होउ छे।
1: रथ बेले हेतला वर्षा?
0: हाँ सकाले भी होतला। स्वतंत्रता जे अमर कुमारी रो जे गंतिया थिले

0: ପ୍ରଶିକ୍ଷଣୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସନକୁ ଫେରିଯାଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ତେବେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଖଡ୍ଗେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିବାରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଭଳି ଘଟଣା ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଭାରତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଧେୟକର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ ଏହି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ଲାଗି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଠକରେ ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସାଂସଦଗଣ, ବିଶେଷକରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱା, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ମିତଲ, ସଦସ୍ୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂହ ସିଗ୍ରିୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସିକିମ୍ର ନମ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରଦୁମ୍ଠାରେ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 9 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 25 ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ୍ ସିଂ ତମାଙ୍ଗ ଗୋଲେଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପିଛା ପିଏମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ୍ ସିଂ ତମାଙ୍କ ସହ ଟନେଲ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ତମାଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ କର୍କଟ ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଉପାୟ ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଓ ଟିକା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ 3 ସ୍ୱଦେଶୀ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ସମାଧାନ ଉପାୟ, ଟିକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉଦ୍ୟୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ଅବସରରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ବହଲ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ୟୁକେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚଳିତ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତା ଓ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିରିଆ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଘଟଣାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜୋନ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି 8 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଏତଲା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ଇକ୍ରା ୱେଲ୍ଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଗାଇଡେନ୍ସ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଇଡି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଓ ମୁଜାଫରବାଦକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିସହ ଗତ 3 ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 23 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ଲାଗି ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ସିକ୍କିମ୍ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of the parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namchi district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And India summons Russian envoy over death of 4 Indian nationals following attack on a commercial vessel. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the GMC Balayogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA Alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said, Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया.
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है.
1: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. During the meeting, Mr. Modi said in every free trade agreement, the interests of Indian farmers have been given the highest priority.
2: Free trade agreement kai deshon ke saath Bharat ne kiya hai.
3: India has signed free trade agreements with several countries. Honorable Prime Minister has stated that these agreements have been concluded while giving the highest priority to the interests of Indian farmers. He has also emphasized that the welfare of the farmers and the broader national interests have been the foremost considerations in every agreement.
2: Isliye ye kisanon ke hit mein aur desh hit mein rahega.
1: Rashtriya Lok Morcha Chief Upendra Kushwaha said that the Prime Minister reaffirmed the government's commitment to ensuring transparency and fairness in the conduct of competitive examinations during the NDA Parliamentary Party meeting. Talking exclusively to Akashwani News at Parliament premises, Mr. Kushwaha said the re-examination for NEET was conducted with complete integrity and future examinations will also be held in the same transparent manner.
4: The NEET examination has been conducted fairly and transparently. Strong measures have been taken to ensure that future exams are also held with integrity. Students should stay relaxed and focused on their studies. Those responsible for corruption and malpractice have been punished according to the law.
1: The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. and Rajya Sabha for the day amidst opposition uproar on various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the House took up motions for election to different committees of the Parliament amid opposition uproar. Presiding Officer Sandhya Ray urged the members to return to their seats and allow the House to function smoothly. She said 0 hour belongs to the members and the entire country is watching the proceedings of the House. Despite her appeal, the opposition members came to the well with placards and carried on sloganeering over NEET and student protests. It led to adjournment of the Lok Sabha till 2 p.m. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of the paper leak of the NEET examination. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the upper house met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan appealed to opposition members to go to their seats and allow the functioning of the House, but the opposition did not pay heed to his advice. Amidst the uproar, the Rajya Sabha was adjourned till 2 p.m. and then for the day, news just came in. The Lok Sabha also has been adjourned for the day. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, today met Lok Sabha Speaker Om Birla and said the opposition wants a discussion on the issue of students. Talking to reporters outside Parliament, Mr. Gandhi said the issue concerns students and the future of the
5: youth. These students here, they're not just complaining about the education system. They're complaining about their future. This is not just about education. This is about the future of young people. That is what this is about. This is much bigger than simply education.
1: The government has refuted several social media posts claiming that a girl died on the spot during protests in Delhi yesterday. The fact-check unit of the Press Information Bureau has clarified that the claim is fake and said no protest-related death has occurred in Delhi. India today summoned the Russian chargé d'affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th of this month, which resulted in the tragic loss of 4 Indian lives. Conveying grave concern and unequivocal condemnation of the attack. The Ministry of External Affairs said such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The ministry said Mr. Ladanov was requested to convey India's strong concerns to his authorities that the targeting of commercial shipping and the resulting loss of innocent civilian lives is unacceptable and must be avoided. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. In Sikkim, 11 bodies have been recovered so far as rescue measures have been intensified to evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi District. The senior superintendent of police of Namchi District informed that 11 bodies have been recovered by the rescue teams. It is suspected that at least 25 people are trapped inside the tunnel, which collapsed likely due to landslides yesterday. Prime Minister Narendra Modi spoke to Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole and assured all assistance, extending condolences to the bereaved families. Mr. Modi, in a social media post, prayed for the speedy recovery of the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. The Namchi District Administration, in coordination with NHPC officials, the SDRF, NDRF, Sikkim Police, Fire and Emergency Services, the Health Department and other line departments, is continuously carrying out the rescue operation. Akashwani correspondent reports that the incident occurred yesterday at the NHPC project in Samardung, South Sikkim. We have more from our correspondent.
6: Despite rains and challenging weather conditions, rescue teams are making every effort to safely evacuate the stranded workers. It is believed that at least 25 persons are trapped inside the 7-kilometer long tunnel at Samardung. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole and assured all assistance to tackle the situation. Meanwhile, district administration have identified 7 bodies so far. Senior officials are on the spot to monitor the rescue operation. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
1: President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have expressed grief at the loss of lives in Sikkim. In a social media post, the President shared condolences to the bereaved families. The President also prayed for the speedy rescue and safe evacuation of the other workers and quick recovery of the injured. In a social media post, Mr. Radhakrishnan conveyed condolences to the bereaved families. The Chardham Yatra in Uttarakhand resumed today after a one-day suspension. The pilgrimage had been temporarily halted yesterday as a precaution due to continuous rainfall and the risk of landslides along the pilgrimage routes. Our correspondent reports.
7: The Chardham Yatra is being conducted in coordination with the district administration, police, SDRF and other concerned departments. Pilgrimage routes are under constant surveillance with heightened vigilance being maintained in vulnerable areas. Garhwal Commissioner Anand Swaroop has appealed to the pilgrims that if a route is temporarily blocked due to heavy rainfall, landslides or any reason, they should stay only at the safe locations or holding areas designated by the administration and to follow the instructions issued by the administration and police. He has mentioned that the safety of pilgrims remains the administration highest priority. All concerned departments have been directed to keep a constant watch on weather conditions and the status of the pilgrimage routes. The commissioner has also urged pilgrims to check the latest weather updates before commencing their journey and to rely only on official information issued by the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: Monsoon activity continues to remain active across Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting several parts of the state. The Meteorological Centre, Shimla, has issued an orange alert for heavy rainfall at many places during the next 24 hours in 5 districts, Chamba, Kangra, Hamirpur, Mandi and Kullu. A report.
8: The spell of monsoon rain continues across Himachal Pradesh, disrupting normal life in several areas. Continuous rainfall has led to a rise in the water levels of rivers and streams across the state. Additional water is being released from the Karcham Dam in Kinnaur district and the Girijaton Dam in Sirmaur district. The local administration has advised people living along riverbanks to remain vigilant and strictly follow safety advisories issued from time to time. Meanwhile, traffic on National Highway 5 has been disrupted due to landslides at Shalkhar and Samdho in Kinnaur district. district in Lahaul Spiti, vehicular movement has come to a halt after a link road was washed away by flash flood in the Jahalma Nala. In Shimla district, 16 link roads in the Tiok subdivision have been blocked. In Chamba district, the Lahadu Nurpur main road has also been blocked following a major landslide at Tikkar Galadhar. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: Meanwhile, the Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Muzaffarabad for today. IMD also issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, East Madhya Pradesh, Goa, Madhya Maharashtra and parts of Northeast India for the day. The Central Drugs Standard Control Organization has granted marketing authorization for India's first dengue vaccine, the attenuated dengue vaccine Q-Denga-R, to strengthen national dengue prevention efforts. This is the first dengue vaccine approved in the country for the prevention of dengue disease. The vaccine is approved for the prevention of dengue disease in individuals of 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravali Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravali@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10, 21-14 defeat to Malaysia's Leong Chun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
9: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचि जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
9: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
9: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
10: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
9: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
11: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
9: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
12: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
9: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
13: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
9: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदन में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
9: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
14: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
9: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
9: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में चार भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
16: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
15: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
16: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
15: केवल आकाशवाणी।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: आकाशवाणी कटक समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी दिन 2:32 परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद।

0: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान सुनंतु संसदरे प्रश्नकालर रेकर्डिंग।
0: ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
2: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
3: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
4: प्रश्न नंबर एक।
5: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
6: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
7: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत को जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, तो तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सबसे प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनु विरासत है और आज मंदिर के रूप में शोक संस्थान के रूप में महाविद्यालयों में मठों में जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए डिजिटल डिजिटलीकृत करने के लिए रिसर्च जीवन बनाने के लिए जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी सार्वजनिक करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
3: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ନାଟକ ଆତ୍ମଦାହ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ମୂଳ ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ରଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍ଗ, ପ୍ରଯୋଜନା ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ।

0: केशव।
1: अरे डिसोजा आ बो।
0: तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होई छे, प्रभु को धन्यवाद। एबे केमि तो छु?
1: अरे देखुनु मु पूरा सुस्थ सबल। अरे जानिछु मो बाहुमूलरु कोन बाहरिला?
0: कोन?
1: बुलेट।
0: बुलेट?
1: अरे हाँ हाँ बुलेट। 1971 रे लड़ाई रे मु जेतेबेले जखम हेतिली सेतेबेले मोठी दुईटा बुलेट लागिथिला, केवल गोटे कढ़ा जाइथिला, द्वितीयटी मो देह भीतर लुचि जाइथिला, एते दिन परे बाहरला।
0: तू केमिते मनीष रे निज देह रे बुलेट लुचि बसथिलु?
1: अरे डॉक्टर कुलकर्णी कहुथिले सर्जरी इतिहास रे एबड़ी घटना बहुत कम अछि। अच्छा तू तो कहिथिलु हॉस्पिटल रु मु जों दिन रिलीफ हेबी सेही दिन मते नबाकु आसिबु, आज हठात केमिते आसिलु?
0: सेही कथा तते कहिबाकु आसिछि, हम फोर्थ यूनिट किछि दिन पै अहमदाबाद जाउछि।
1: काई कि
0: सेठी किछि दिन हला जोर सांप्रदायिक दंगा चलिछि, प्रशासन को सहाय करिया पै हम फोर्थ यूनिट को डकरा हिछि, एही शहर बाट दे जाउथिलु तते भेटिबाकु चली आसिले। अच्छा एथे तबे जाय।
1: मे गॉड ब्लेस यू।

0: हेलो केशव केम छु
1: के जसवंत तू जे एते दिन परे एठी के आसीबू ए कथा मु मोटे भाई पर नथिली
2: बंधु दर डोरे टाणी आसी रे छोटे कोटे फेरिया परे तो चिट्ठी पाइली चाकरी चारी घर को फेर छु पर जानली तो हाथ केमती अछि
1: भारी जिनस उठेबा को डाक्टर मना करचंती अरे तेबे मु धीरे धीरे भोजनदार जिनस उठेबार अभ्यास कलिनी
2: डिसोजा हमको छाड़ी चली गला ना
1: हाँ जसु
2: आउ तू मत से एकुटिया छाड़ी चली आसिलु
1: आमे सब गोटे गोटे नदी जसु बाहरी छु गोटे जगार किस दिन एका सांगे बही चलु तापर अलग हो जाए जीवन अनंत सागर गर्भरे हाँ तू टे विश्राम कर मु तो जलखिया तैयार
2: ना ना तू आगे बस मोटे तीन दिन पर आसर को तो आसुनी बहुत दिन है या भर कौन कौन कर

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀବନ୍ତ ଦାସ, ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ସାହି, ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା ଶତପଥି।
1: ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ।
2: ସଦା ଖୁସ୍ ରହୋ। ଆଓ ସ୍ୱାଗତିକା, ତୁମ ତୋ ହମେଶା ସମୟ ପର ଆତି ହୋ। ଆଜ ଇତନି ଦେରି କୈସେ ହୋ ଗଈ?
1: ଗୁରୁଜୀ ଆଜ ଭି ମେ ସମୟ ପର ହି ଆତି କିନ୍ତୁ।
2: ହଁ ହଁ ବତଲାଓ, ସଂକୋଚ ନ କରୋ। କ୍ୟା ବାତ ହୈ, କ୍ୟୋଁ ଦେରି ହୋ ଗଈ?
1: ବାତ ୟା ହୈ ଗୁରୁଜୀ।
2: ବୋଲୋ କ୍ୟା ବାତ ହୈ?
1: ଆଜ ମେରେ ୟହାଁ ଚାଚୀ ଜୀ ଆଏ ହୁଏ ହୈଁ। ଉନକେ ଆଓଭଗତ ମେ ସମୟ କି ପତା ନହିଁ ଚଲି। ୱେ ଅପନେ ସାଥ ମେରା ମଙ୍ଗାୟା ଗୟା ପୁସ୍ତକ ଭି ଲେ ଆଏ ଥେ।
2: ଆଚ୍ଛା ତୋ ୟହ ବାତ ହୈ।
1: ଜି ଗୁରୁଜୀ, ମଙ୍ଗାଏ ଗଏ ପୁସ୍ତକ କା ପଢାଇ ମେ ହି ଦେର ହୋ ଗଈ। ମେ ଅପନା ସାଇକଲ ମେ ତେଜି ସେ ଆଇ ହୁଁ। ଆତେ ସମୟ ଚୌକ ପର ମେରେ ସାମନେ ଏକ ବସ ଆ ଗୟା। ମେ ତୋ ଗିରତେ ଗିରତେ ବଚି, କିସି ପ୍ରକାର ସକୁଶଲ ୟହାଁ ତକ ପହଞ୍ଚ ପାଇ ହୁଁ।
2: ଈଶ୍ୱର କି କୃପା ହୈ କି ଏକ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟନା ଟଲ ଗଈ। ଅବ ଠିକ ସେ ଚାରୋ ତରଫ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଡାଲତେ ହୁଏ ସାଇକେଲ ଚଲାନା, ସମଝି କି ନାହିଁ?
1: ଜି ସମଜ ଗଈ, ଅବ ହମେଶା ସତର୍କ ହୋକର ହି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଙ୍ଗି। ଗୁରୁଜୀ ଆଜ କା ଦେରି କୋ କ୍ଷମା କରେଙ୍ଗେ, ଫିର ଏସି ଗଲତି ନହିଁ ହୋଗି।
2: ଠିକ ହୈ ଠିକ ହୈ, କଭି କଭି ନହିଁ ଚାହତେ ହୁଏ ଭି ଦେରି ହୋ ଜାତି ହୈ। ତୋ ଠିକ ହୈ, ତୁମ ଅବ କଭି ଦେରି ମତ କରନା, ଠିକ ହୈ?
1: ତୋ ଗୁରୁଜୀ ଆଜ କା ପଢାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରେ, ଆଜ ଆପ ଲିଙ୍ଗ କେ ବିଷୟ ମେ ପଢାନେ ଵାଲେ ହୈଁ।
2: ଠିକ ହୈ, ଆଜ ହମ ଲିଙ୍ଗ କେ ବିଷୟ ମେ ହି ପଢାଇ କରେଙ୍ଗେ। ସବସେ ପହଲେ ମେ ତୁମାରେ ଦ୍ୱାରା ବତଲାଏ ଗଏ ଦେରି ସେ ଆନେ କେ କାରଣ ମେ ହୁଈ ଲିଙ୍ଗ କି ଗଲତି ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଙ୍ଗା।
1: क्या मुझसे लिंग संबंधी गलतियाँ हुई है गुरुजी?
2: हाँ स्वगतिका, तुमसे लिंग संबंधी गलतियाँ हुई हैं। तुमने अपने सभी वाक्यों में एक दो गलतियाँ कर दी हैं।
1: वह कैसे गुरुजी, बतलाइए जिससे मैं अपनी गलतियों को समझकर उसे दूर कर सकूं।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बतलाता हूँ। तुम्हें याद है तुम्हारा पहला वाक्य क्या था?
1: जी गुरुजी, मेरा पहला वाक्य था आज मेरे यहाँ चाची जी आए हुए हैं।
2: हाँ यही वाक्य है। देखो यहाँ चाची जी शब्द महिला वर्ग के अंतर्गत आने के कारण स्त्रीलिंग शब्द है, अतएव स्त्रीलिंग के अनुसार शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, आज मेरे यहाँ चाची जी आई हुई हैं। जरा तुम बोलो,
1: आज मेरे यहाँ चाची जी आई हुई हैं।
2: ठीक है, उसी प्रकार माता जी, बुआ जी, दादी जी, मामी जी, दीदी जी आदि सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत होने के कारण आदर सूचक क्रिया सदैव इकारांत हो जाएगी।
1: एक उदाहरण दीजिए गुरुजी।
2: एक उदाहरण सुनो, जैसे मेरी माता जी आज आने वाली हैं, मेरी दादी जी आज मुंबई जाएंगी। एक उदाहरण तुम भी दो स्वागतिका।
1: राम की बुआ जी आई हुई हैं।
2: ठीक है, अब स्त्रीलिंग के ठीक विपरीत पुल्लिंग शब्द होते हैं।
1: गुरुजी पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है ना?
2: हाँ पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। चाचा जी, पिताजी, मामा जी, दादाजी पुल्लिंग शब्द हैं। इसकी क्रियाएं सदैव एकारांत होंगी, समझ रही हो कि नहीं?
1: जी गुरुजी समझ गई।
2: तो ठीक है, तीन उदाहरण दो।
1: जी गुरुजी, पहला उदाहरण है मेरे पिताजी आज दिल्ली से आने वाले हैं।
2: शाबाश शाबाश स्वागतिका, दूसरा उदाहरण दो।
1: आज मेरे यहाँ चाचा जी आए हुए हैं।
2: एकदम सही है, तुम्हारा पहला वाक्य चाचा जी के लिए होता तो बिल्कुल सही होता। आज मेरे यहाँ चाचा जी आए हुए हैं, सही है। तीसरा वाक्य बनाओ।
1: मेरे दादाजी कमरे में बैठे हुए हैं।
2: शाबाश सही वाक्य है। आदरणीय व्यक्ति के लिए जब हम कहते हैं तब क्रिया एकारांत होती है, किंतु जब हमसे कोई छोटा हो तब उसके संबंध में हम कुछ कहें तो क्रिया आकारांत होगी।
1: वह किस प्रकार गुरुजी?
2: वह इस प्रकार स्वगतिका, मान लो तुम्हारा छोटा भाई कल दिल्ली जाने वाला है तो उसके विषय में इस प्रकार बतलाओगी, मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा। अगर तुम्हारा कोई नौकर है तो उसके लिए तुम यह कहोगी, नौकर रामू बाजार गया है। अगर शब्द स्त्रीलिंग में है तो होगा, दुलारी अब काम पर आएगी, समझे कि नहीं?
1: जी गुरुजी समझ गई। मुझसे और कहां गलती हुई है?
2: तुमने जो गलती की है वह है उनके आव भगत में समय की पता नहीं चली। यहाँ समय पुलिंग है, अब जरा सुधार करवा के बताओ।
1: उनके आव भगत में समय का पता नहीं चला।
2: अब ठीक है, उनके आव भगत में समय का पता नहीं चला। तुम्हारा तीसरा वाक्य है, वे अपने साथ मेरा मंगाया गया पुस्तक भी ले आए थे।
1: यहाँ क्या गलती है गुरुजी?
2: यहाँ तुम्हें कहना चाहिए था, वे अपने साथ मेरी मंगाई गई या मेरे द्वारा मंगाई गई पुस्तक भी ले आई थी। यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है।
1: अब तो गुरुजी मेरा यह वाक्य भी गलत होगा।
2: कौन सा वाक्य स्वागतिका?
1: मंगाए गए पुस्तक का पढ़ाई में ही देर हो गई।
2: हाँ, यह भी गलत है। यहाँ होना था मंगाई गई पुस्तक की पढ़ाई में देरी हो गई। यहाँ पुस्तक भी स्त्रीलिंग है और पढ़ाई भी स्त्रीलिंग है।
1: आते समय मेरे सामने एक बस आ गया, यह वाक्य सही है गुरुजी?
2: यह भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आते समय मेरे सामने एक बस आ गई कहना चाहिए था, क्योंकि बस स्त्रीलिंग शब्द है। बस अंग्रेजी शब्द होते हुए भी यह स्त्रीलिंग है। बस आ गई यह कहना चाहिए था।
1: बस स्त्रीलिंग शब्द है गुरुजी?
2: हाँ, बस स्त्रीलिंग शब्द है। इतना ही नहीं, कार, ट्रेन, स्कूटर, साइकिल आदि शब्द भी स्त्रीलिंग है। जैसे ट्रेन आ रही है, मेरी साइकिल गिर पड़ी, इस प्रकार कहना चाहिए।
1: गुरुजी, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे, जरा बतलाइए।
2: ठीक है, तुम्हारी बढ़ती हुई जिज्ञासा को देखकर मुझे खुशी हो रही है। ऐसी जिज्ञासा विद्यार्थियों में होनी ही चाहिए।
1: गुरुजी, आपने कहा कि लिंग के अनुसार हिंदी में क्रियाएं बदलती हैं।
2: हाँ, मैंने ठीक ही कहा, लिंग के अनुसार क्रियाएं बदलती हैं। जैसे राम जी आ रहे हैं, परंतु सीता देवी आ रही हैं। पिताजी बैठे हुए हैं, परंतु माता जी बैठी हुई हैं।
1: गुरुजी, ओड़िया में तो ऐसा नहीं होता।
2: हाँ, ओड़िया में ऐसा नहीं होता। जैसे बापा आसुछन्ति, बोऊ आसुछन्ति, इसका हिंदी अनुवाद करो स्वागतिका।
1: बापा आसुछन्ति का हिंदी अनुवाद होगा, पिताजी आ रहे हैं।
2: ठीक है, बोऊ आसुछन्ति का क्या होगा?
1: बोऊ आसुछन्ति का होगा, माताजी आ रही हैं।
2: उसी प्रकार राम कहू थिला, मीरा कहू थिला, इसका अनुवाद होगा, राम कह रहा था, मीरा कह रही थी।
1: उड़िया में लड़का कहेगा मुँह घोरो को जीबी, तो लड़की भी कहेगी मुँह घोरो को जीबी। हिंदी में क्या कहेंगे गुरुजी?
2: स्वागतिका, उड़िया में लड़का कहेगा मुँह घोरो को जीबी, तो हिंदी में कहा जाएगा मैं घर जाऊंगा। लड़की उड़िया में कहेगी मुँह घोरो को जीबी, हिंदी में होगा मैं घर जाऊंगी। हिंदी में कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया आकारांत होगी, मगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया इकारांत होगी।
1: गुरुजी, हिंदी में कितने लिंग हैं?
2: हिंदी में केवल दो ही लिंग हैं, एक है पुलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पहले क्लीव लिंग या नपुंसक लिंग का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के संदर्भ में होता था, जो अब प्रायः नहीं हो रहा है। हाँ, तुम पुलिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा दे सकती हो?
1: जी गुरुजी, दे सकती हूँ।
2: अच्छा, दो, देखे कहाँ तक सही दे रही हो।
1: गुरुजी, पुरुष जाति का बोध कराने वाला लिंग पुलिंग है।
2: एकदम सही है, पुरुष

0: जाति का बोध कराने वाला लिंग पुलिंग है। कुछ उदाहरण दो।
1: जैसे पिता, चाचा, मामा, लड़का, शिक्षक, देश, गायक, नेता, पहाड़, मित्र, सखा, गोला, पीला।
0: एकदम सही है। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा दो स्वगति का।
1: स्त्री जाति का बोध कराने वाले लिंग स्त्रीलिंग कहते हैं।
0: कुछ उदाहरण दे सकती हो।
1: सखी, सहेली, माता, बुआ, गंगा, यमुना, पहाड़ी, नायिका, गायिका, पंडिताइन, पीली, गोली। ठीक है ना गुरुजी?
0: बिल्कुल सही है। तुम इतनी जल्दी समझ गई, यह बड़ी खुशी की बात है। अब तुम ध्यान से सुनो। सभी देशों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस।
1: पर्वतों के नाम किस वर्ग में आते हैं गुरुजी?
0: पर्वतों के नाम पुलिंग हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, आरावली, हिंदू कुश। इसी प्रकार अनाजों के नाम भी पुलिंग हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ।
1: गुरुजी, सभी अनाजों के नाम क्या पुलिंग हैं?
0: नहीं, अपवाद के रूप में मक्का, सरसों और अरहर स्त्रीलिंग शब्द हैं। पेड़ों के नाम पुलिंग होते हैं, तुम जरा इनके नाम बतलाओ।
1: आम, जामुन, पीपल, बड़, नीम, गुलमोहर, सफेदा। ठीक है ना गुरुजी?
0: सही है। धातुओं के नाम पुलिंग शब्द माने जाते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा। केवल एक धातु है जो स्त्रीलिंग है।
1: गुरुजी मैं बताऊं?
0: ठीक है, बतलाओ।
1: वह शब्द है चांदी।
0: हाँ, एकदम सही है, वह शब्द चांदी है। चांदी चमक रही है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन सोना के लिए क्या कहा जाएगा?
1: सोना सुंदर दिखलाई पड़ रहा है।
0: हाँ, सोना सुंदर दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है स्वगतिका, सुनो, ग्रहों के मासों के नाम पुलिंग होते हैं।
1: मैं तो गुरुजी मार्च और अप्रैल को स्त्रीलिंग समझती थी।
0: तुम गलत समझ रही थी। मासों या महीनों में मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पुलिंग हैं।
1: तो जनवरी, फरवरी और मई कौन सा लिंग है गुरुजी?
0: अपवाद स्वरूप जनवरी, फरवरी और मई स्त्रीलिंग हैं। उसी प्रकार पृथ्वी को छोड़कर मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र, तारा, ध्रुव आदि ग्रह पुलिंग हैं। वारों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार पुलिंग हैं।
1: हीरा, मोती, जवाहरात, पन्ना, पुखराज कौन सा लिंग है गुरुजी?
0: तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुमूल्य पदार्थों में मणि ही केवल स्त्रीलिंग है, नहीं तो बाकी सभी पुलिंग हैं।
1: गुरुजी पानी स्त्रीलिंग है ना?
0: नहीं नहीं स्वगतिका, पानी पुलिंग है। शराब और लस्सी को छोड़कर सभी द्रव पदार्थ पुलिंग होते हैं, जैसे तेल, शरबत, दूध, इत्र, अर्क, ये सब पुलिंग शब्द हैं।
1: गुरुजी जरा स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में भी बतला दें।
0: तो ठीक है, सुनो। हाँ, तुम लिखने के लिए कुछ लाई हो कि नहीं?
1: लाई हूँ गुरुजी, कॉपी लेकर आई हूँ, लंबा कॉपी है। आप बतलाइए, मैं लिखती जाऊंगी।
0: देखो स्वगतिका, यही गलती हो गई। कॉपी स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ तुम्हें लंबी कॉपी कहना चाहिए था। इकारांत शब्द या ई प्रत्यय के योग से बने शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घोड़ी, चाची, दासी, देवी, पुत्री, पहाड़ी, रस्सी, बकरी इत्यादि।
1: भाषाओं के नाम क्या पुल्लिंग होते हैं गुरुजी?
0: नहीं नहीं स्वगतिका, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, हिंदी। तुम भी चार भाषाओं के नाम बतलाओ।
1: अंग्रेजी, चीनी, जापनी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया।
0: हाँ, अंग्रेजी, चीनी तुमने, जापनी कह दिया, वो है जापानी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया। ठीक है स्वगतिका, तुम बतला सकती हो कि महानदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है?
1: गुरुजी महानदी स्त्रीलिंग है, क्योंकि नदियाँ तो स्त्रीलिंग होती हैं।
0: शाबाश, अब तुम ठीक से समझने लगी हो। नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि स्त्रीलिंग हैं।
1: गुरुजी क्या नदी का पुल्लिंग शब्द भी है?
0: हाँ है, नदी का पुल्लिंग शब्द है नद। नद को हम पुल्लिंग कहते हैं।
1: गुरुजी क्या भारत में भी कोई नद भी है?
0: हाँ है, ब्रह्मपुत्र नद है। यह नदी नहीं है, गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सदियों से बहता चला आ रहा है। रही है नहीं, आ रहा है, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि यह नद है, नदी नहीं है।
1: गुरुजी, महीनों के नाम पुल्लिंग हैं, तो

0: तिथियों के नाम क्या होगा?
1: सभी तिथियाँ स्त्रीलिंग हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी।
0: गुरुजी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ।
1: ठीक है, पूछो स्वागतिका, क्या है?
0: आपने कहा कि इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, फिर पानी, मोती तो पुल्लिंग शब्द हैं।
1: सही प्रश्न किया है तुमने। देखो, सभी इकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। केवल पांच ऐसे शब्द हैं, केवल पांच ऐसे शब्द हैं जो इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग माने जाते हैं।
0: वे कौन कौन से शब्द हैं गुरुजी?
1: वे शब्द हैं, स्वागतिका ध्यान से सुनो, वे शब्द हैं पानी, मोती, घी, जी और दही। ये जो शब्द हैं, ये पुल्लिंग है, इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग शब्द हैं।
0: क्या जी और दही पुल्लिंग हैं?
1: हाँ, जी और दही पुल्लिंग शब्द हैं।
0: उदाहरण देकर समझाइए गुरुजी।
1: ठीक है, बच्चों से, विद्यार्थियों से ज्यादातर यही गलती हो जाती है, तुम जरा ध्यान से सुनो। जी का जब हम प्रयोग करते हैं तो कहते हैं मेरा जी मचल रहा है, मेरा जी मचल रही है, ऐसा नहीं कहते, मेरा जी मचल रहा है, आज दही खट्टा हो गया है, दही खट्टी हो गई, ऐसा नहीं कहते, आज दही खट्टा हो गया है, पानी अच्छा लग रहा है, पानी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं, मोती चमक रहा है, मोती चमक रही है, ऐसा नहीं कहते, घी अच्छा है, ऐसा भी कहा जाता है। तुम समझ गई कि नहीं?
0: जी समझ गई।
1: समय गतिशील है, उसे रोका नहीं जा सकता। देखो, देखते ही देखते समय भी हो गया। तुम यहाँ जो समझी हो उसे घर पर ठीक से दोहराना, जिससे तुम्हारी लिंग संबंधी गलतियां कम से कम हो।
2: शेष है हिंदी शिक्षा कार्यक्रम। शिक्षादान करथिले विजय कुमार साही, शिक्षा नीथिले स्वागतिका शतपथी।
3: सुनंतु एक विशेष सूचना। आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र रे आवश्यक थिबा किसान उपभाषा रे कार्यक्रम उपस्थापना पाई आग्रही युवक युवतींक ठारु दरखास्त आह्वान करा जाउ अछि। एथि पई योग्यता हैला किसान साहित्य और संस्कृति संपर्क में पर्याप्त ज्ञान थिबा आवश्यक, किसान उपभाषा रे परिष्कार भावे शुद्ध उच्चारण करि पारुथिबे, प्रार्थी अथवा प्रार्थिनीक शिक्षागत योग्यता स्नातक बा तदूर्त होइथिबा आवश्यक, प्रार्थी अथवा प्रार्थिनीक कंठस्वर बेतार उपयोगी होइथिबो, प्रार्थी अथवा प्रार्थिनीक बयस जून मास 16 तारीख 2026 सुद्धा 20 रु 50 वर्ष मध्यरे होइथिबा आवश्यक, कंप्यूटर संपर्कित व्यवहारिक ज्ञान रखिथिबे, संबलपुर महानगर निगम अंचलर सीमा भितरे बसवास करुथिबे। आग्रही प्रार्थी अथवा प्रार्थिनी साधा कागजरे निजर नाम, ठिकणा, शिक्षागत योग्यता, बयस, जाति, फोन नंबर अबा मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर आदि विवरणी दे ईमेल आईडी sambalpur.co@gmail.com रे आवेदन करिपारिबे किंबा डाक जोगे पठाई पारिबे। आवेदन पत्र सहित गोटे पासपोर्ट साइजर रंगीन फोटो संयुक्त करि बयस तथा शिक्षागत योग्यतार प्रमाण पाई उपयुक्त प्रमाणपत्रर फोटोकॉपी संयुक्त करिबे। निर्धारित फी बाबदकु प्रार्थी अथवा प्रार्थिनीकु 225 टंका एवं शतकड़ा 18% GST सह मोट 266 टंका केवल NEFT अबा ऑनलाइन बैंकिंग जोगे प्रसार भारती अकाउंट नंबर 1086175257, आईएफएससी कोड SBIN 00005 रे जमा करिबे। अकाउंट नंबर टी पुनि थरे कहि रखुछु 1086175257, आईएफएससी कोड SBIN 00005। आवेदन पत्र रे ट्रांजेक्शन नंबर ओ तारीख दर्शाइबे। डिमांड ड्राफ्ट नगद किंबा अन्य कौनसी आकारे फी ग्रहणीय नुहे। आवेदन करिवार ठिकणा हैला कार्यक्रम मुख्य आकाशवाणी कचेरी रोड संबलपुर 768001। आवेदन करिवार शेष तारीख 2026 मसीहा अगस्ट मासर 15 तारीख। मन रखंतु आवेदन करिवार शेष तारीख 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ତାରିଖ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06632410961ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, 06632410961। ସୂଚନାଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।
2: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।

0: ଶେଷ ହେଲା ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁନୀଶ ଶର୍ମା। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है।

0: महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani.
2: सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई भारत गौरव दास। नीट प्रश्नपत्र लीक मामला आउ भिन्न भिन्न प्रसंग के नेकरी आइबा काल तक मुलतवी हला संसदर दुई गृह। भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया शेष हेबाउतरु आइबा अक्टोबर मास 26 तारीख नु नवेम्बर 7 तारीख तक हेबा घर के घर सर्वे। राज्यर सब् अंगनवाड़ी केन्द्र शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी अधीन थी गठन करा परिचालना कमिटी ए बाबदे सबु जिलापाल चिठी लेखला महिला आउ शिशु विकास विभाग। भुवनेश्वर थाने आज पूर्वांचल आंचलिक पुलिस समन्वय कमिटी हला उच्चस्तरीय बैठक। आंतः राज्य अपराध नक्सल दमन आउ समन्वित सुरक्षा रणनीति उपरे हेछे आलोचना। राज्य जिल्ला उपखंड तहसील ब्लॉक आउ सहरांचल मानक नार संशोधित इंग्राजी बनान के सबु सरकारी काम थी व्यवहार करबार के राजस्व आउ विपर्यय परिचालना विभाग तरफ सबु जिलापाल मानकु निर्देश। देशे पहला थर लगी डेंगू रोग के प्रतिरोध करबार लगी क्यूडेंगा टीका के अनुमोदन देला केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। कटक एससीबी मेडिकल कॉलेजर भित्तिभूमिर विकास आउ पुनः विकास कामर समीक्षा कले स्वास्थ्यमंत्री। चलती बछर जून मास तक 55,40,00,000 नु अयत्का उपभोक्ता यूपीआई व्यवस्था संगे हेचन सामिल कहले अर्थराष्ट्रमंत्री। जम्मू काश्मीर न जबर वर्षा लगी 23 जनकर गलान जीवन। देशर तृणमूल स्तरर डिजिटल क्रिएटर मानकर प्रतिभा के विश्व स्तरती पहुंचाबार लगी जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंजर पायलट पर्याय हला मूल। आउ बंगोपसागर न होता घूर्णिमलयर प्रभाव थी राज्य भिन्न भिन्न जगान लगि रही है वर्षा। आईवा 24 घंटा भितर 20 जिलाके सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। एचनीर मुख्य खबर न शेष हला। इतार उत्तर मुख्य खबर शुनिपारे राति 11:05 थी।
2: संबलपुरी मुख्य संवाद सुनिले आकाशवाणी संबलपुर।

0: ଶିକାର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଆଶା ଓ ସଚେତନତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲେଖ୍ୟ ମୂଳରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ
1: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦ ସମୀକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृहमंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
2: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर,

असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि बीएचईएल ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। बीएचईएल द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। बीएचईएल भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉସ୍ତାଦ ସାହିଦ ପରଭେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସୀତାର ବାଦନରେ ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧୁର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ରାଗ ହଂସଧ୍ୱନି। ତବଲା ସଙ୍ଗତ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ ଘଟେ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ आकाशवाणी दिल्ली केंद्र।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
5: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
2: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
6: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
2: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौते

0: आत्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाया जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग

0: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion of

0: महाराज कलिंग सम्राट पुरुषोत्तम दूत आपणकर दर्शन अपेक्षा रे
1: कलिंग दूत आसीबा को कह
2: प्रणाम महाराज उत्कल गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देवंकर कांची नरेश को अभिवादन प्रभुंकर पत्र शिछामर अर्पण करुछि
3: सुनुछ महामंत्री पद्मावती सह विवाह दिन निर्घंट करने को उत्कल राजा दूत पठाई ना ए विवाह असंभव पुरुष तुमर ए स्वप्न केबे साकार होई पारिबो नहीं
0: किंतु महाराज आपण तो निजे प्रस्ताव उपस्थापित करथिले प्रभु जगन्नाथ सम्मुखरे वचनबद्ध होइथिले
4: महाराज मुझे दूर जाने शौर्य वीर्य सौंदर्य पराक्रम सम्राट पुरुषोत्तम अतुलनीय
3: निसंदेहरे किंतु गुंडीचा दिन लक्ष लक्ष जनता प्रजा पाठक सम्मुखरे जी सोहस्तरे समार्जनी धरी रथ परिष्कार करे राजा होई एक घृणित हीन कार्य करिबाकु कुंठाबोध करे नहीं सही नीच चंडाल हस्तरे मुँ मोर कन्या को समर्पण करि पारिबि नहीं
4: महाराज उत्कल गजपति को चंडाल बोली कही आपण केवल उत्कल राज सिंहासन मर्यादा करि नहंती स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ को मध्य अपमानित करिछंती आपण विज्ञ ए अज्ञता आपण को निकट शोभा पाए
3: रसना संजत कर प्रगल्भ दूत सिंहासन राजार थाए चंडाल नुहे
4: दूतर श्रृंखलित अनुशासन रसना संजत करने को मत बाध्य कर महाराज नचे आपण मंतव्य उत्तर देवे ए दास कार्पण्य कर अनुरोध करमू आपण कठोर निष्पत्तिर पुनर्विचार कर
5: महाराज राजजेमा जीवन प्रश्न एड़ित
3: ना ना ना सेनापति ना आकाशे चंद्र कक्षच्युत हो पारे पृथ्वी तार घूर्णन गति परिवर्तित करि पारे किंतु किंतु कांची राज सल्ल नरसिंह कन्या स्नेह तार आत्मसम्मान को बळी दे पारिबो नहीं

0: जगन्नाथ जगन्नाथ
1: भाई
0: देखुचु जगन्नाथ यही अपरिणामदर्शी उद्भ्रांत राजा को अरे यही ठाकुर सेवा पाई तू ठाकुर राजा लक्ष राजार मौड़ मणि अथच यही ठाकुर आज्ञा न नहीं तू युद्ध को चलीगलु मिथ्या अहमिकार वशवर्ती होई निजर प्रतिष्ठा गौरव सबकिछि बोली गलु
1: हाँ भाई पुरुषोत्तम अथपतन मु चिंताग्रस्त हो पड़ी मनुष्य कर्म ठाकुर महनीय तत्व प्रसारित होइथाए ए जगत रे जेऊ सेवा कर्म पई जगन्नाथ आज लांछित अपमानित तार तात्विक परिभाषा हला हे मानव तम हृदय चंडाळत्व परिहार कर मोह मायारे बसीभूत न होइ स्नेह प्रेम दया क्षमा ओ मानविकतार पवित्र मंत्र रे दीक्षित हो सत्य शिव सुंदर को उपलब्धि कर निष्ठार सहित जे कोनसी कर्म नीच किंबा घृणित नुहे किंतु
0: किंतु एटा पुरुषोत्तम निकट रे गौण हो गला अथच मुख्य हला एक नारी को पाइबार दुर्बार आकांक्षा जैविक क्रोधार एक निर्लज परिप्रकाश
1: भाई समग्र जनतार प्रतिनिधित्व करुथवा शासक जेबे भ्रष्टाचारी आत्मकेंद्रिक हुए तेबे काहा को आदर्श भाव ग्रहण करी ए देश ए जाति अग्रसर हेब
0: तू ठीक होइछ जगन्नाथ कोटि कोटि प्रजा पाठकंक मध्यरु केवल जणे राजा हुए काहेकि कारण तार कर्म आउ संस्कार पई से दुखरे उद्विग्न हेब नाही सुखरे विगतस्व हेब नाही स्थिति हेब दुखे सुद्विग्न मना सुखे सुविगतस्व बीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरोच्यते मने अछि जगन्नाथ
1: सब मने अछि भाई आउ सेथि पई त पुरुषोत्तम रे दुर्गति रे मु बेसी विचलित होई पडुछि जहा हेले मध्य से मोर परम भक्त आद्य सेवक किंतु कौन बा करि परिबि मु
0: जगतर सर्वकर्मर कारक जिए से कहुचि मु किछि करि परिबि नै बोली
1: ना भाई मु चाहिले बे किछि हेबो नै महाभारत युद्ध न हो बोली मु कोन चाहि नथिली सेइथि पई दूत भावरे कार्य करबाकु मु केबे कुंठाबोध करि नै हेले कोन हेला अठरटा दिन भितरे अठर अक्षणी सैन्य निशेष हो गले एते बड़ जादव वंश को कलीर प्रभाव मुक्त करबाकु महर्षि अष्टवक्र आशीर्वाद भिक्षा करी किंतु से आशीर्वाद अभिशाप परिणत हो गला जदुवंश ध्वंस हो गला कौन करी निरुपाय भाई
0: ताहले तू कौछु जे जे कर्म करिबो ता फल भोक्रिया को से बाध्य
1: निश्चित यहाँ ही महाकाल अनुशासन धारा कामनार वशवर्ती होई पुरुषोत्तम गोटिक परे गोटे जो भूल कर चली तार फल भोगिबा को से बाध्य मन अच्छी भाई भगवत गीतार से पंक्ति जहाँ मु अर्जुन को बुझाई थी महाभारत युद्ध क्षेत्र रे धायतो विंशयान पुंस संगस्ते से उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध भिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति।

0: प्रणाम राजन।
1: मते आ लज्जा दंतु नहीं महाराज, आज ठारो एही राज्य आपण कर। आउ पराजित साल्लो नरसिंह जे कोनोसी दंड पई प्रस्तुत।
0: राजन, उत्कल गजपति रा क्षमता राज्य विभव लिप्सा केबे भी नथिला आ आज भी नहीं, किंतु आपणकर अहंकार ओ अविवेकितार शास्ति विधान पई आज रे कांची अभिजान ए युद्ध ए विपर्चय ए प्रलय आउ ए प्रलय रे नेतृत्व नैछंती स्वयं प्रभु जगन्नाथ। कला धला घोड़ा चढ़ी दुई भाई रण रे अवतीर्ण होइछंती, संचालित करिछंती उत्कल बाहिनी को। पुरुषोत्तम त केवल निमित्त मात्र। हाँ महाराज, एई विजय रे स्मारकी स्वरूप विघ्नराज गणेशन को नै जाउछी श्रीमंदिर रे प्रतिष्ठा करिबी, आउ नै जाउछी आपणकर अली अली गुणवती कन्या पद्मावती को। आपण पुरुषोत्तम को चंडाल कहि पारंती राजन, किंतु उत्कल गजपति को चंडाल बोली कहि अपमानित करिछंती। जगन्नाथ को सेवा को चंडाल सेवा कहि उपेक्षा करिछंती। तेणु से ही अपमान प्रतिशोध नेबा पई आगामी श्री गुंडीचा दिन रथारूढ़ प्रभु श्री जगन्नाथ सम्मुख रे लक्ष लक्ष जनता जनार्दन को साक्षी रखी मु आपण को कन्या को एक चंडाल हस्त अर्पण करिबी। यहा ही प्रभुर निर्देश, उत्कल गजपति सम्राट पुरुषोत्तमर सिद्धांत। सेनापति, देवी पद्मावती को ससम्माने उत्कल महामंत्री निकटे पहुंचाई दे मोर आदेश जनई दियंतु।
2: महाराज, आज दिन देवी पद्मावती को एक चंडाल हस्तरे अर्पण करबा को मते आदेश दे, सेई दायित्व निर्वाह करबा को दास आपन को अनुमति प्रार्थना।
0: आपण आदेश पालन करिबे, एथरे अनुमतिर प्रयोजन कोन?
2: तेबे तेबे आस मा, आज रही पवित्र गुंडीचा दिवस रे रथारूढ़ प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ को साखी रखी लक्ष लक्ष जनता जन

0: ଶୁଣିଲେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନାଟ୍ୟାଂଶୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ବଳଭଦ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚୌଧୁରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ରାଜଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ, ଉତ୍କଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ସେନାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଦୂତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ, ବିକ୍ରମଦେବ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ନରସିଂହ ଦେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ, ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ, ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ସେଠୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ଲି, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ,
1: विक्रम के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में